अपने वीरा नाल माए रल के मैं रहंदी सी, तेरे कर बैठी माए दस तेनू की कहंदी सी। जुदा अपने तो कीता माए, जुदा अपने तो कीता माए, तू तो दुख भी ना फोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए कंधा दे ओले नी। तिया तन ने बेगाना माए, तिया तन ने बेगाना माए, सच कर दी।

एक ऐसा फर्ज निभाया तू, सारे बुक बुक रोंदे माए, सारे बुक बुक रोंदे माए, मोहो कोई ना बोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, छड़ चली अज माए, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, छड़ चली अज माए, बाबले दी गली में जी पर के रोवांगी माए, सोरे बैठ के कली में, हुन साम के रख ले माए, हुन साम के रख ले माए, मेरे गुड़िया पटोले नी, हुन लुक लुक क्यों रोनी माए, कंधा दे ओले नी, तेरे की करा महल चुबारे माए, तेरे की करा महल चुबारे माए, जिथे मेरे जोगी था नहीं, जिथे मेरे जोगी था नहीं।

जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं, सूली उत्ते चढ़ के मैं ता जरकिया भी नहीं। ओ अपने परछावे तो, ओ अपने परछावे तो आपे डरी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जिंद वादियां चे डुब गई, जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म तरी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम, चुक लवां जे सिरे ओदा निकल जाए दम। की करां जे आपे चे, की करां जे आपे चे जिस्म लड़ी जांदा। ओ डुब जाना अजे भी वादे करी जांदा। जिंद वादियां चे डुब गई जिस्म।

अपने खातर दुनिया मर दी मिटदी आईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए, किसे दी खातर दसो कीने जान गवाईए। चरखड़िया ते चढ़ना बंद बंद कटवाना बड़ा ही औखा है, सरबंस बार के धर्म निभाना बड़ा ही औखा है, मखमल छड़ के कंडे आते सोना बड़ा ही औखा है।

मैनू जानी ना तिला भोकर बन के हूं जदेऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं जे आकड़ छड़ी ना अपनी तैनू नक्शे तो पूंज देऊं मैं पखियां दी झल नहीं

0: हारी गबरुआ हिम्मत ना हारी बेलोका।
1: सिंह दी रचना जिहड़ी कि जोगिंदर पाल मल जी ने सांझी कीती है। इस तों बाद हुण मलकीत बुल्ला जी साडे इक शायर ने उहनां दी धी है सिमी सोतरा जी ओह दिल्ली नूं जिहड़ी बंगार पाउंदी होई इक जिहड़ी रचना लै के हाजिर हो रहे ने। सिमी सोतरा जी दा दुआबा रेडियो दे प्रोग्राम गौंदी शाम दे विच निघा स्वागत है। सिमी सोतरा जी, जी आयां
2: लेके असी दिल विच आए आ जुनून नी रद्द करवाने तेरे काले ए कानून नी लेके असी दिल

गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। गल तेनू साड़ी मननी ही पैनिया, आकड़ जो तेरी पननी ही पैनिया। असी दिन रात

करने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले। तरने लगा के पंजाब देख ले, कई कई दिन बेहिसाब देख ले।

का सफर, आते जाते हुए मुस्कुराना, हंसते गाते दिन बिताना, हाँ जिंदगी ये

साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। साथ सफर का रूठे ना, रूठे अगर तुम ना लेना। मौका हरगिज़ ना तू गवाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ, जिंदगी ये कह

एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन तू चुप हो जाएगा। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन चुप तू हो जाएगा। इस बात को भूल न जाना, हंसते गाते दिन बिताना। हाँ जिंदगी ये कहेगा तू गाना, हंसते गाते दिन बिताना। ला ला ला ला।

0: सक्सेसफुल भी हुए। तो
1: मन
0: ये
1: में एक जो तुसी ठान लेंदे हो ना, एक मैनू हिंदी दी लाइन याद आ रही है, लहरों को शान देखकर
0: जी।
1: ये मत समझना कि समुंदर में रवानी नहीं है,
0: हाँ
1: हम जब
0: बिल्कुल,
1: उठेंगे तूफान बंद कर उठेंगे, अभी हमने उठने की ठानी नहीं है।
0: क्या बता, वाह जी
1: और आप जब
0: वाह।
1: एक बारी मन में ठान लिया कि
0: हाँ
1: मैंने ये
0: बिल्कुल
1: अचीव करना है,
0: जी।
1: उस तो बाद मतलब कोई तानू रोक ही नहीं सकता, एक बार ठानन की लोड़ है था मन।
0: मतलब जेड़े फेलियर दा रोना रोण वाले लोग आ, वो दे फिर लगभग उन आप ही जिम्मेवार।
1: नहीं, फेलियर फेलियर थोड़ी लाइफ से बहुत जरूरी है,
0: जी।
1: कोई भी तुसी सक्सेस में अचीव करना है, एक बारी जे तुसी फेल हो जाते हो,
0: हाँ
1: मैं
0: जी
1: कहना कि वो वरदान होंगे, ठीक है,
0: जी
1: क्योंकि
0: जी जी
1: उसके बाद तुसी सारी उम्र अपने उम्र जड़ा है संभल के चलते हो कि पिछली बार
0: हाँ
1: मैं ये फेल आया सी, इस कारण तो फेल होया सीगा,
0: कोशिश हो जाती
1: कॉशियस
0: जी
1: हो जाते। बिल्कुल,
0: जी
1: फेलियर तो बाद जड़ा उठना होंगे हैगा, वो बहुत थोड़ा लाइफ
0: और
1: है,
0: जरूरी है जी।
1: वो स्टेप जो थोड़ा चंगा चला जाता है, उस तो बाद तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। जो तुम फेल हो गए, बह जाओगे, यू क्रिप करन लग जाओगे कि
0: हाँ
1: मैं तो
0: करने
1: फेल हो गया
0: लगे,
1: जी, मैं हम कुछ नहीं कर सकता लाइफ दे विच, मैं कुछ और
0: रब
1: देखना,
0: ने
1: मैं
0: ठीक नहीं
1: रब
0: किया।
1: नू दोष देता, गुआंढियां नू दोष देता, इस तरह कर लिया, फिर उत्थे ही तुहाडा जड़ा है सारा खराब हो जाना फोकस। जे तुसी खड़े हो गए उस तो बाद, फिर तो तुहानू कोई रोक ही नहीं सकता।
0: बिल्कुल वो जरूरी है जी।
1: बिल्कुल
0: गिरते हैं शाह सवारी मैदाने जंग में,
1: बिल्कुल
0: वो तो हम
1: बिल्कुल
0: क्या
1: बिल्कुल
0: गिरेंगे। ऐसा जरूरी है कि बंदा घट्टो घट तुरे तो सही, वो कोई हिम्मत ना रखे। कि कल्पना चावला ने उन्हें लिखा कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी कंध ते लिख के ला लिया, तो वाकई उन्हें ड्रीम फॉलो किया ते
1: बिल्कुल
0: स्टार की यात्रा की। तो ये जरूरी है जिहड़ा कोचिंग, एक आपां गल कर रहे सीगे कि जिहड़ी कोचिंग दी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। बंदे नूं मैन टू मैन वो वेरी करती है, किसी नूं लोड़ है किसी नूं नहीं लोड़ है। फिर भी जिहड़े कोचिंग सेंटर्स है, ये तो मशरूमिंग अब इन्हां दी इन्नी ज़्यादा हो रही है, इन्हां दी कोई सिग्निफिकेंस अपन नूं की लगती है जिहड़े।
1: कोचिंग एक भेड़ चाल बन चुकी है अज के
0: जी
1: जमाने के
0: जी
1: विच।
0: जी जी
1: कोचिंग मैं कहना कई कई बच्चे इस तरह के होंगे ने कि उन्होंने कोचिंग की रिक्वायरमेंट हो जाती है कि बिना कोचिंग के असं पढ़ ही नहीं सकते, एंड दे आर डूइंग वंडर्स। कोटा है,
0: हाँ जी हाँ
1: मोटा
0: जी हाँ
1: दिल्ली
0: जी
1: एक हब
0: वो
1: बन
0: तो
1: गया
0: पूरा
1: है,
0: कोचिंग जंगल बन गया
1: उधर
0: है।
1: हब बन गया है, तो उत्थे जोड़े बच्चे निकल रहे हैं काफ़ी सक्सेसफुली निकल रहे हैं,
0: जी
1: बट
0: जी जी
1: तुसी परसेंटेज देखो, उत्थे
0: जी
1: जो लख बच्चे जा रहे हैं तो 100 बच्चा निकलता हैगा,
0: ओ जी बिल्कुल
1: ठीक है। तो ये चीज़ नू आपा 100 दी अचीवमेंट नू देखते हैं कि 100 बच्चा कोटा ने निकालता या दिल्ली ने
0: निकालता। हाँ
1: निकालता
0: जी
1: या कोई पर्टिकुलर शहर है इस तरह का जो 100 बच्चे हर साल निकाल रहा है, बट उसे परसेंटेज भी देखी जाए कि कहड़े बच्चे नहीं निकालते थे, वो अगे की करते पे ने।
0: बिल्कुल
1: मेरा
0: सही।
1: कंसर्न नहीं है कि वो बच्चे फेल हो रहे हैं, मेरा कंसर्न ये है कि फेल होने तो बाद उन्होंने उत्थे कोई काउंसलिंग उत्थे हो रही है
0: हाँ जी हाँ जी
1: कि वो बच्चे जड़े कि किसी कारणवश नहीं निकलते पे,
0: नहीं
1: अपने
0: नहीं
1: करियर से नहीं निकलते पे,
0: हाँ जी हाँ
1: कि
0: जी
1: वो फेल होने तो बाद अगे होर मेहनत करते ने, अगे होर ट्राई करते ने, अगे कितने कोई डाइवर्स फील्ड के चले जाते हैं,
0: जी
1: डिस्पर्स हो
0: जी जी
1: जाते हैं, कि
0: हाँ
1: वो उतने स्टक रह जाते हैं अपने करियर के, अपने लाइफ के पॉइंट पे कि जी मैं तो हूँ निकलना ही है, 6 7 साल 8 साल अपने भावे मैं खराब कर लवा।
0: जी
1: सो
0: प्रेशर
1: इस तरह के जो कोचिंग सेंटर ने, उदो पेरेंट्स का अगेन, फ्रेंड्स का, पीयर ग्रुप का, इवन कोचिंग सेंटर्स का रोल बन जाता है कि बच्चों को ढंग ना गाइड करन, 3 4 साल हो गए नहीं निकलता पाया, एंड अगे लाइफ से या
0: जी
1: तो उन्होंने कहो कि एक टाइम लिमिट दे दो कि भाई इन्ना टाइम तू ट्राई कर ले, निकल दो,
0: हाँ
1: उस बाद अपना प्लान बी ते आ जाओ। एक प्लान बी होना लाइफ से हर चीज से और
0: जरूरी
1: बहुत
0: है,
1: जरूरी हैगा,
0: एक बैकअप
1: एक
0: प्लान
1: बैकअप,
0: जरूरी है।
1: जिवें
0: हाँ जी हाँ
1: तुहाडे
0: जी
1: स्टूडियो से बैकअप प्लान तुहाडे हर चीज का होंदा हैगा,
0: बैकअप
1: और बैकअप प्लान लाइफ से होना भी बहुत जरूरी है कि कितने कोई
0: बिल्कुल
1: स्टक करके तो तुसी प्लान बी ते आ जाओ। तो मेरा कंसर्न यही है कि जो कोचिंग सेंटर से तुसी जा रहे हो, कोचिंग के बावजूद भी कुछ परसेंटेज, 99% तुसी सक्सेसफुल नहीं रहोगे,
0: हाँ
1: 1%
0: जी
1: ही तुहाडा सक्सेस चांसेस है।
0: जी
1: उस तो बाद अपना जो प्लान भी जरूर अपने नाल रखना चाहिए है, क्या था पढ़ाई के नाल नाल तुसी कोई जॉब ज्वाइन कर लो, या तुसी अपना कोई नाल साइड बिजनेस शुरू कर सकते हो। आजकल मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इस तरह के काफ़ी
0: सारे आ
1: जड़े
0: रहे
1: प्रोग्राम
0: हैं,
1: बनते पे
0: बड़े
1: ने,
0: अच्छे
1: तुसी
0: प्रोग्राम है।
1: एंटरप्रेन्योरशिप में जाके काफ़ी चंगा इन्वेस्टमेंट दे आजकल साधन बन गए ने, तुसी नाल
0: जी
1: नाल कर सकते हो, नाल नाल अपने ड्रीम नु अचीव करने का भी जड़ा है अटैम्प्ट कर सकते हो।
0: बिल्कुल
1: बट
0: बिल्कुल।
1: फेल हो गए, फेल होने तो बाद तुसी ना उठे, फिर उत्थे तुहाडा करियर जड़ा है खत्म
0: क्योंकि
1: है।
0: जिहड़ा फेल हो के फेल पास होना दे जिंदगी दा एक वो
1: बिल्कुल
0: यही जिंदगी है। लेकिन
1: बिल्कुल
0: इतने प्रेशर इन्ना होंदा है उत्थे, जदों आपां कोटे दी गल करिए जां इवन जिहड़े साडे सराउंडिंग होर शहरां दे विच भी कोचिंग सेंटर चलते आ, जदों पेरेंट्स उत्थे भेजदे आ बच्चे नूं, वो इनू एक ग्रंटड मान लेंदे आ कि हुण उत्थे चल गया, दैट इज बस ये हो गया बन गया है जो आप बनाउणा चाहुंदे हो। उस उत्तों बच्चे दे जिहड़ी स्ट्रेस लैवल कितने ज़्यादा वध जांदा है।
1: बिल्कुल
0: ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ